0: जमुना का बोल राधा
1: जंगलू को जिंदगी setiap Ahad pukul 5.15 menit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nah.